0: 97.6
1: Shukla Gandaki FM 97.6
2: Shukla Gandaki Time Check
3: यति बेला दिउँसोको ठिक दुई बज्यो।